0: है लाइका रेडियो।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल एट होम प्रोटेक्ट London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
3: Dil ne ye kaha hai dil se bol
2: chudiyan. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
5: Wake up to Kajal every weekday morning on Breakfast. Leica Radio.

दुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

जोर ना जीवन मरण नहि जोर, जोर ना राज माल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच्छ

0: every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: This Diwali, let your celebrations shine brighter.
2: Looking for amazing Diwali offers? Then there's only one place to shop.
1: Falcon Cash and Carry. From your favorite groceries and fresh produce to Diwali sweets, snacks, drinks and festive essentials.
2: We've got everything you need to make your Diwali truly special.
1: And wait, the Diwali mega offers are here.
2: Bigger savings, amazing prices and fantastic value, all under one roof. So don't miss out. Bring your family, fill your trolley and get ready to celebrate Diwali in style.
1: Falcon Cash and Carry. Your one-stop shop for Diwali. Visit Falcon Cash and Carry today, 82A Syston Street, Leicester, LE12JU and 2A Rowlatt's Hill, Leicester, LE54UN.
3: It's back, it's bigger and better.
0: ZTV and Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival.
3: Powered by Ram Jewelers and associated with UK Management College.
0: Join us on Sunday the 1st of November from 12 PM up until 8 PM at the Ram Gurria Centre in Leicester with shopping, food, entertainment and plenty more. It's a Diwali celebration you won't want to miss.
3: See you there. Supported by Disha Premium, travel partner, home and away holidays, exclusive charity partner, Go Dharmic.
0: For store bookings, call 07803-240580
3: or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
5: हमारी रक्षक है वो
6: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट
7: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं उन सबका मतलब क्या है कौन कर रहा है
6: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज नाउ फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम
8: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
9: 11, 11.
10: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place.
10: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
9: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
12: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 0208839880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
13: खाकरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
14: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
13: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
0: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Vadhan, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want.
15: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
16: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
0: Breakfast with Deep Roger.

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

रखी नहीं और बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो बैडी बोलती है। गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

मिट्टी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, ना मुझे ऐसे मस्का लगा। रही ना किसी काम धाम की, जब से लड़की को चस्का लगा।

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: This is Leica.
2: Hello ji, this is Sheena. And yes, we were talking about the dabbe wali chai, the stove wali chai or spoiled, the boiled chai or simply kettle chai. Which is your favorite one? And a lot of people are messaging me, and I know the inclination will always be towards that masala chai. Dabba nikalenge sab, chai banayenge. Main recipe nahi batane wali hu, har ek ki different recipe hoti hai. Aur please mujhe mat boliega. I can make really good stuff. Khana wana sab banana aata hai, lekin ek chai hai, wo kabhi nahi mujhse achhi banti. Every time I try making, kuch na kuch gadbad zarur hoti hai. Aur jab koi ghar pe aata hai na, to fir ye kaha jata hai ki haan beta chai bana do. And I'm just looking at them like. इन्हों दे तो रबी रखा अगर ये चाय पी ले मेरे हाथ की और उसके बाद डेफिनेटली कभी नहीं बोलेंगे कि शीना हमें चाय पीनी है सो बैड एट मेकिंग चाय एवरी टाइम आई ट्राई इट्स नॉट दैट आई एम नेवर ट्राइड स्पेशली दैट डब्बे वाली केटल वाली में तो सिर्फ पानी गर्म करना है और टी बैग डालना है और उसका कोई फ्लेवर किसी को भी कभी भी नहीं आता मुझे खुद को नहीं आता तो किसी को तो क्या आएगा बट दैट मसाला चाय ऑलवेज ट्राई मैं वो अदरक कूट के इलायची कूट के यू नो पुट सम लौंग But I don't know why, it is the quantity of water versus milk or it might be the bahut zyada boil nahi kari, kachi cha bana deti. I really don't know what is it. And I'm really, really like, you know, as they say, India mein to kisi ko impress karna achhi chai pila do. Wo na ho paya mujhse. And I'm still trying my best. Kuch log hote hain, unki haath mein ek chai banane ka magic hota hai. आई थिंक वो मैजिक कहीं ना कहीं मेरे हाथ में नहीं है अगर आपके पास कुछ ऐसे टिप है जो मुझे ऑफलाइन दे सकते हैं तो डेफिनेटली दे दीजिएगा बट यस अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड मसाला चाय एंड लेटर आई एम गोना टेल यू अबाउट व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ मसाला चाय वर्सेस केटल टी एंड देयर आर सम कॉन्स एज़ वेल वी आर गोना टॉक अबाउट दैट बट राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू किशोर कुमार विद दिस अपकमिंग ब्यूटिफुल ट्रैक
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. The Ritu Sharma Show, featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Leica Radio.

स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है. Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Lyca Gold and Lyca Radio Midlands from 1 p.m. to 4 p.m.

0: What a beautiful track, isn't it? मेरे हाथों में तो एक चाय का कप कोई पिला दे, that'll be more than enough, right? And yes, the battle will always go. And there's no solution to it. Dabbe wali cha, ya followed by the kettle wali chai. And you know the interesting answers. Lot of people have started, you know, sending me pictures. Ki aisi dikhti hai hamari banayi hui chai. Aur aap mujhe, you know, feel karwaiye. Ki basically, you know, ki kitni difficult hai jo chai banani hai. But to be honest, there are people who are actually messaging me ki hame bhi chai banani nahi aati. Aur hum darte hai kab jab koi kehta hai ki hame please chai bana ke pila do. We just so scared. We just take a, you know, deep breathing and we just say that ki aap please apne aap hi bana lo, kuch aur pi lo. And that's actually, kyunki kai bar bahut zyada watery ban jati hai, kai bar bilkul itna doodh jal jata hai. So I think bahut sare dhurandhar honge yahan jo bahut achhi chai bana pate honge. So kudos to them. But there's an interesting thing jo ki mujhe kisi ne message karke interestingly ye puchne ki koshish ki hai. कि आप चाय के बारे में बात कर रही हैं कि आप मोदी जी की रिलेटिव हैं. नहीं नहीं नहीं जी, मैं कोई मोदी जी के रिलेटिव नहीं. अगर मैं चाय के बारे में बात कर रही हूँ, सो थैंक यू शेखर. नहीं, कहाँ से कहाँ आप लोगों कड़ी जोड़ लेते हैं, बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, यू नो, फॉर एन एंगेजमेंट. बट जस्ट टू गिव यू अ समरी ऑफ, जो लोग सोचते हैं ना कि बॉइल्ड इंडियन चाय पीना मतलब आई नो देयर इज अ मसाले का फ्लेवर दैट बेसिकली गिव्स अरोमा एंड इट्स गुड, यू नो, फॉर द बॉडी, बट अल्टीमेटली जो बॉइल्ड इंडियन चाय है ना उसे एसिडिक होती है और उससे काफ़ी ज़्यादा एसिड भी बनता है. एंड नन अदर देन केटल टी से भी होता है, क्योंकि वो तो प्योर ब्लैक टी जो है आप बेसिकली बॉइल कर रहे हैं, तो इट्स एसिड लिक्विड. बट पीपल आउट देयर, देसी विल ऑलवेज बी देसी, राइट? एम आई राइट और एम आई राइट? दे लव देयर चाय की प्याली. एंड प्लीज़ हैव इट विद योर ओन घर वाली, नो बाहर वाली. सो प्लीज़ हैव द मसाला चाय. एंड इफ देयर इज एनीवन हु रियली वांट्स टू शेयर द रेसिपी, यू आर मोर देन वेलकम.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Looking at currency update today, £1 is going to fetch you 126.94 Indian rupees, 86.04 Afghan Afghani, 367.59 Pakistani rupee, 163.18 Bangladeshi taka, 437.52 Sri Lankan rupee, 171.75 Kenyan shilling and 1.32 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: Gold in pounds is trading at £104.10 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
2: Leica Radio.
1: Seven stations, one podcast, one mobile app. This is the Leica Radio Network. Leica Radio.
3: This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar. One performer.
4: Countless personalities.
3: A whole universe of entertainment.
4: Sunil
5: Grover, live UK tour 2026.
3: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
5: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
3: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.

0: भाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
1: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
0: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: Advertise on Leica Radio Midlands. Covering Birmingham, Leicestershire, Coventry, Derbyshire, Wolverhampton and Shropshire. Call us today on 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk. Across the Leica Radio Network, this is Ritu Sharma.

0: This is from the movie Hatya. And prior to that, it was Aina ka khoobsurat sa gana. Goriya re goriya. Only on Like a Gold, this is Sheena. And it is a special, special day today. क्यों? क्योंकि आप मिल सकते हैं संजय कपूर से. हाँ जी सही सुना आपने. And that today at Mumbai Sandwich Station, Leicester में. You can meet the heartthrob. We all love him, right? Dilbar, Dilbar. At Mumbai Sandwich Station, Belgrave Road, Leicester. Today at 3 p.m. और फिर उनको आप मिल सकते हैं Bollywood Legends brought to you by Jay's Entertainment at D Montfort Hall, Leicester में. और इनके साथ आफ्ताब शिव दसानी, अमंतिका एंड मयूरी भी होंगी. तो डेफिनेटली अगर अब तक अभी तक आपने टिकट नहीं खरीदी है, जस्ट चेक आउट एंड यू कैन बाय द टिकट्स एज वेल. बट यस, फॉर श्योर, इफ यू वांट टू मीट संजय कपूर टुडे, तो प्लीज प्लीज प्लीज जाइए, दौड़िए. एंड यस, सैंडविच स्टेशन पे, लेस्टर पे, टुडे एट 3 पी एम, एंड यू कैन मीट संजय कपूर. एंड लेट मी नो कैसी थी मीटिंग.
1: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 126.95 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or by simply using Yono SBI mobile app. Terms and conditions to apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: And of course, aaj hai special special, Sunday special, jodi special. Aur Bollywood mein kuch jodiyan aisi hoti hain jinke naam ke saath ek pura daur yaad aa jata hai. एक तरफ बॉलीवुड के हैंडसम, चार्मिंग और लार्जर देन लाइफ हीरो, यू नो हुम आई एम टॉकिंग अबाउट, पंजाब द मुंडा धर्मेंद्र, और दूसरी तरफ ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी. क्या खूबसूरत सा दौर था. दोनों पहली बार 1970 में मिले थे, तू हसी में जवां में साथ आए, और फिर पर्दे पर इनकी केमिस्ट्री ने जादू तो बस जैसे बिखेर दिया. इट वॉज ऑल अबाउट मैजिक, अबाउट दैट केमिस्ट्री. सीता और गीता, शोले, ड्रीम गर्ल, जुगनू, राजा जानी एंड यू नो मेनी मेनी मोर फिल्म्स, ये दोनों साथ नजर आए. लेकिन इनकी कहानी सिर्फ रियल लाइफ तक नहीं थी, जंप डाउन टू द रियल लाइफ एज वेल. और इनकी केमिस्ट्री भी सिर्फ रियल लाइफ तक नहीं थी, राइट? और कहाँ से वो शुरू हुई, स्क्रीन पे, एंड दे लैंड अप इन गेटिंग मैरिड. और उनकी ये जो रियल लाइफ रिलेशनशिप में बदली और दोनों ने 1980 में शादी कर ली, दैट वॉज लाइक द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ देयर जर्नी. तो आज की जोड़ी नंबर वन में याद करते हैं एक ऐसी जोड़ी को जिनकी केमिस्ट्री में रोमांस भी था, मस्ती भी थी और एक अलग ही स्टार क्वालिटी भी. आई एम टॉकिंग अबाउट धर्मेंद्र और हेमा मालिनी. आई एम गोना प्ले फ्यू ट्रैक्स, यू ऑल्सो लेट मी नो विच इज योर फेवरेट ट्रैक. मे बी आज शायद वो प्ले हो जाए. But thinking about this couple always makes me feel love does exist, right? And they look so good on the screen and off screen as well, isn't it? So let's hear it out. Dharmender aur Hema Mani ke baare mein aapka kya kehna hai? Kuch aisi interesting baatein? So main definitely karungi. Stay tuned. This is Sheena on Like a Gold.
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Like a Radio.
3: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network. Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
2: Join legendary singer Kavita Krishnamurthy.
4: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
5: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
4: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
5: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410 साउथ Or travel at all protected.
7: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner, Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit SAFUK.com.
8: For 15 years, Jannan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jannan. For you, for us and for everyone. The Jannan and J-Dot anniversary sale up to 70% off is now on. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester. Or shop the sale online at jannan.com and junaidjamshed.co.uk.
9: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Da New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Da New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
10: Save the date. Leica Radio brings you our first ever New Year's Eve bash. Leicester, 31st of December.
11: Leica Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Leica Gold. Aur online suno leicagold.com pe.
10: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: Yes, dream girl. There can only be one dream girl. और वो है हेमा मालिनी. और आज हम celebrate करें जोड़ी number one, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी. And this is definitely one of the most romantic gana. She became a fashion influencer इस गाने की वजह से. Everyone was trying to follow in 1970s. वो साड़ीज, flowing साड़ीज, वो delicate jewelry. And she got the lifetime title, dream girl. जो कोई नहीं ले पाया ना ले सकेगा.
1: Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Laika.
0: Jahan dream girl bahut hi elegant, sweet, sober aur fashionista thi, wahi Dharminder ji bilkul hi apne hi tareeke mein Punjabi style, a non dancer. And he was never known for his dancing. But एक गाना था जहाँ उन्होंने अपनी ही choreography खुद ही कर दी थी और वो था मैं जट यमला पगला दीवाना. I'm gonna play that next. You know why it's such an energetic गाना? And you know it's such a freestyle गाना, carefree गाना. जब भी आप उस गाने को सुनते हैं ना आपको भी अलग ही dancing की vibe आ जाती है. और उनका वो signature style आज तक, and especially you know the only person who can do it is Salman Khan. कभी आप ध्यान से देखिए वो हमेशा वही step follow करता है. And no one can do it. I think second one would be Krishna. Whenever he tries to portray as Dharminder ji, or jo basically Kiku hai, wo Sunny Deol banta hai, to wo bhi kafi type se, you know, similarity se kar lete hain. Par bahut hi khoobsurat sa gana hai. From the movie Pratigya, that we are going to play next. But jodi ke baare mein to jitna bolein utna hi kam hai. Ekdam perfect jodi keh sakte hain unko aap. लाइफ में चैलेंजेस भी बहुत है, बट चैलेंजेस के बाद प्यार की हमेशा जीत होती है, अगर मैं बॉलीवुड स्टाइल में कुछ बोलने की कोशिश करूं तो. एंड इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट, इज़न्ट इट? एंड दैट इज़ व्हाट धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्यारी सी जोड़ी, प्यारा सा प्यार. सो लेट्स प्ले दिस ट्रैक.
1: ये है लाइका रेडियो. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: एंड हाँ जी, और अब टाइम है आप लोगों को बताने का कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1% दैट्स होस्टेड बाय अनिल कपूर. इट्स क्वाइट अ नाइस शो. आई यू नो वॉच्ड इट एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार. डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो हॉटस्टार ऐप अभी के अभी करिए. जियो हॉटस्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप टू.
2: दिस इज रितु शर्मा.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.

0: असली केमिस्ट्री तो इस मूवी में थी. यस, बेसिकली बहुत ही ड्रामेटिक फाइनल एक पिक्चर थी शोले, जिनमें उनकी केमिस्ट्री को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया गया था. एंड दैट वाज बेसिकली शोले, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी. वाह भाई क्या बात, राइट? यू नो, एंड कुछ कुछ फनी फैक्ट्स, यू नो, व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर इट आई फाउंड इट. हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र जी को पोएट एट हार्ट कहा था और बताया था कि उनके पास हर मौके के लिए एक ना एक शेर होता था, नॉट शेर, और वो शेर हमेशा कहीं ना कहीं वो चिपका देते थे. और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि शूटिंग के दौरान उनके फादर उन दोनों को अकेले वक्त ना मिले, इसके लिए ना कार में उनके साथ आके बैठ जाया करते थे. और धर्मेंद्र जी भी हड पंजाबी भी उनके पास वाली सीट लेने की कोशिश करते थे और वहीं साइड में आके बैठ जाते थे. तो ऑफकोर्स प्यार तो दोनों तरफ से था. कहते हैं प्यार को छुपाना मुश्किल होता है, और हेमा जी के फादर शायद ये बात बहुत पहले ही समझ गए थे. दैट्स व्हाई वो कोशिश कर रहे थे कि यू नो कि थोड़ा सेपरेट रख सके. बस प्यार किस बंदिशों में बंधा, राइट? सो दिस इज शीना, होप यू एंजॉयड दिस जोड़ी जोड़ी स्पेशल. एंड यस, बिकॉज द आइकॉनिक जोड़ी इज डेफिनेटली मेक अस फील, एंड वील बी ब्रिंगिंग सम इंटरेस्टिंग जोड़ीज एज वेल, क्योंकि जोड़ियों का साथ तो हमेशा बॉलीवुड में रहा है. सिर्फ कपल जोड़ी नहीं है, और भी बहुत सारी जोड़ी है. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. दिस इज शीना. And now it's time to talk about the podcast. हाँ जी, हमारा podcast episode number 35, जो कि बहुत ही special है, because उसमें हमारे CEO Raj Badden talks to Ruby Raza and Dhoni Brasco about stepping into the role of a CEO on one of the British largest Asian radio networks, the Laika Radio Network, and his journey behind the title. ऐसे title के लिए बहुत मुश्किल होता है एक CEO के लिए, you know, करना, and he has done fabulous job in this special 5 years. Showcases Raj Badden talks about the nerves, the responsibilities that came with the role of CEO, and the success story definitely, and the changes he wanted to bring to the organization. And he's got tons of ideas, and we are just keen to see what he's bringing up next. But aap log zarur jaiye aur ye suniye podcast Laika Extra Podcast, available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple or other major streaming platform. Aapko kahin aur jana nahi hai, bas in platform pe jana hai aur suniye podcast Laika Extra. Easy. All the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Laika Radio. Your Dubai property journey starts here.
1: With a special 3-day offer from Danube. Pay just 20% at booking. Danube pays the next 10% and you pay the remaining 70% on handover.
2: Available across all projects. Friday to Sunday only. To is mauke ko miss mat kijiye. Ports Real Estate invites you to the Dubai Property Expo. September 26th and 27th.
1: 10 a.m. to 8 p.m. at Marriott Hotel Smithway, Leicester. LE19 1SW. Discover greens, breeze and sharugs. Explore your options and meet our team for prices, availability and bookings.
2: Aaiye, apni Dubai property journey shuru kijiye. No additional discount.
1: Terms and conditions apply.
3: Passports, tickets, kids' tablets.
4: All packed. But what about our phones? We'll need them for maps, WhatsApp, photos.
3: And checking in with grandma.
4: Exactly. Roaming abroad can get expensive.
3: That's why I got Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
4: So we can keep our numbers for WhatsApp and bank OTPs?
3: Yep. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
4: Holiday sorted.
5: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.

0: डेफिनेटली ये लोग बहुत एक्साइटेड लग रहे थे बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ कि भी कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे तेरे जैसा यार मिला नॉन स्टॉप दे सेइंग दैट सो डेफिनेटली इनके कर्म तो डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे कि ऐसा जो इन्हें यार मिला आजकल तो लोग बेसिकली ये सो पिछले जन्म क्या इस जन्म में भी निभा लें वो भी बहुत बड़ी बात है दिस वॉज जस्ट ऑन अ लाइट नोट बट डेफिनेटली दैट्स दिस इज ऑल अबाउट राइट कि बॉलीवुड सॉन्ग्स अगर हम देखें 60s 70s में यू नो दे वर सो मच ऑफ लव कंसर्न आजकल सब अपनी मर्जी में अपनी धुन में चलते हैं कि पहली बार अगर एक बार नहीं प्यार होता है कई बार फिर पता नहीं क्या क्या क्या और लॉजिक निकाल देते हैं बट वो यही कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं देयर इज ऑलवेज अ कर्मा टू इट तो पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होता है दैट्स व्हाई वी कीप ऑन सेटलिंग अकाउंट्स राइट एंड दैट्स हाउ द लाइफ मूव्स ऑन आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग किस चीज़ को मानिए या नहीं मानिए बट दिस इज जस्ट प्रॉबली विद द गाना आई डेफिनेटली से कि अगर पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे ना तभी अच्छा यार मिलेगा अगर भैया इस जन्म में अच्छे कुछ कर्म कर लो शायद अगला जन्म थोड़ा सा तर जाए और अच्छा हो जाए
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.
0: Hi, this is Sheena on Like a Gold. और मैंने भी एक बहुत ही प्यारा सा सपना देखा है कि आप सब लोग एक स्माइल दे दीजिए मुझे बस. That's all I need. And वो वर्चुअल स्माइल मेरे पास आ रही है एंड आई एम गिविंग यू माई ऑन एयर कीप ऑन स्माइलिंग बी हैप्पी इंजॉय द संडे विद दिस ब्यूटिफुल गाना फ्रॉम लव स्टोरी देखो मैंने देखा एक सपना फूलों के शहर में वो घर अपना आई विल हैव दैट सून

0: गुड आफ्टरनून। आइए एक नजर आज के मौसम पर डालते हैं। सबसे पहले लंदन और मैनचेस्टर में लाइट रेन्स एंड जेंटल ब्रीज चल रही है। लंदन का हाई टेम्परेचर है 21, लो विल बी 13। मैनचेस्टर में 19 डिग्री है मैक्सिमम एंड लो विल बी 8 डिग्री सेल्सियस। एंड मिडलैंड्स में सनी एंड जेंटल ब्रीज चल रही है, सूरज देवता निकले हुए हैं। 22 है टेम्परेचर हाई एंड लो विल बी 11 डिग्री सेल्सियस। आपके दिल का मौसम कैसा है? अच्छा ही होगा ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call South All Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Get your product advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales at leicamedia.co.uk. Sarita Samawal.
0: आपकी सेवा में हाजिर आज के प्रोग्राम के साथ, और मुझसे पहले थे अनुराग यहाँ पर ऑन लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो पर। एनिका वाज सिटिंग इन फॉर आनंदी एंड अभी भी वो कैरी ऑन करेंगे। एंड सरिता आपकी सेवा में हाजिर यहाँ पर।
1: लाइका
2: रेडियो,
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Sarita Sabharwal.

0: वेल गुड आफ्टरनून. दो गीत आपने बैक टू बैक सुने और दोनों गीत जबरदस्त थे और दोनों गीतों में कुछ कॉमन था. क्या कॉमन था आप सोचेंगे, कोई वर्ड तो था ही नहीं कॉमन. तो सोचते रहिए सोचिए, आज का सवाल थोड़ा सा मुश्किल है. ज़रा सोचें कि क्या कॉमन था. शायद नहीं पता चले तो फिर अगला गीत सुनेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए. एंड हाँ, किसी ने कहा कि शाहरुख खान कॉमन है दोनों गीतों में. तो यस, ये एक तो ये चीज़ ज़रूर है. यस बॉस में भी, दिल तो पागल है में भी, दोनों गाने उन पर ही पिक्चराइज हुए थे. और यस बॉस का गीत सबसे पहले आज के प्रोग्राम में शामिल हुआ. यस बॉस ये अज़ीज़ मिर्ज़ा साहब ने डायरेक्ट की थी फिल्म. संगीत था जतिन ललित का. एंड इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ ही जूही चावला एंड आदित्य पंचोली भी. और इसका संग जो एक गीत था, एक दिन आप यूं ही हमसे मिल जाएंगे, दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिलीप कुमार सॉन्ग शाम गम की कसम फ्रॉम द मूवी फुटपाथ इन 1953. और क्या काम और क्या था इस गीत में, ज़रा सोचते रहिएगा. दूसरा गीत दिल तो पागल है फिल्म से मैंने चुना था. यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया था और यश चोपड़ा जी के को आज हम याद भी करेंगे इन द नेक्स्ट आवर भी एंड फॉलोइंग आवर भी. उनके कुछ गीत मैं ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करती रहूँगी. एंड इस फिल्म में भी काम किया था शाहरुख खान ने. माधुरी दीक्षित थी, करिश्मा कपूर थे, अक्षय कुमार थे एंड म्यूज़िक था उत्तम सिंह जी का. यश चोपड़ा जी के बारे में जो नहीं जानते तो उन्हें बता दूं कि आज के दिन उनका जन्म हुआ था. उनके जन्म एनिवर्सरी पर या जन्मतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हैं. 1932 27th of September को उनका जन्म हुआ था और 21 अक्टूबर 2012 में वो इस यहाँ को छोड़कर गए, पर पीछे छोड़ के एक बहुत बड़ी विरासत भी. अब ज़रा आपसे पूछ लो, कैसे हैं, कैसे मिजाज हैं आपके. उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं और इंजॉय करेंगे नेक्स्ट 3 hours विद मी. और मेरा वादा है कि अच्छे अच्छे गीतों से मैं आपका मनोरंजन करती रहूँगी. आज हम महेंद्र कपूर साहब को भी याद करेंगे उनकी डेथ एनिवर्सरी पर. और बड़े अच्छे अच्छे गीत आज की प्लेलिस्ट पर हैं और उम्मीद करती हूँ कि इन सभी गीतों को आप पसंद करेंगे. हाँ जी, तो फिर अगर तबीयत ठीक नहीं है तो क्या करना है आपने, जस्ट वेट, हो जाएगी ठीक. इतना फिक्र नहीं करते हैं. और इफ़ यू आर फीलिंग अ बिट डाउन तो कम ऑन, चीयर अप. लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू एंजॉय. जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए गाने तो चुन चुन कर लाई है सरिता. चाहे आप जहाँ भी बैठे सुन रहे हों, चाहे लाइक अ गोल्ड 1035 पे सुन रहे हैं, DAB पर, अलेक्सा पर, गूगल होम एंड लाइक अ गोल्ड .com के जरिए सुन रहे हैं, कहीं भी बैठे, मिडलैंड्स में हैं, मैनचेस्टर में हैं या लंदन और ग्रेटर लंदन के किसी भी इलाके में हैं, अब तो हम ब्रेडफोर्ड, लीड्स सब जगह सुनाई देते हैं, वुल्वरहैम्पटन में, श्रूसबरी में. तो जहाँ भी बैठे आप सुन रहे हैं, आपका स्वागत, आपका खैर मकदम है. आइए ज़रा आगे बढ़ लें.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to 126 rupees and 40 paisas today. And don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit SBI UK .statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on Lyca Radio. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: This Diwali, let your celebrations shine brighter.
3: Looking for amazing Diwali offers? Then there's only one place to shop.
2: Falcon Cash and Carry. From your favorite groceries and fresh produce to Diwali sweets, snacks, drinks and festive essentials.
3: We've got everything you need to make your Diwali truly special.
2: And wait, the Diwali mega offers are here.
3: Bigger savings, amazing prices and fantastic value, all under one roof. So don't miss out. Bring your family, fill your trolley and get ready to celebrate Diwali in style.
2: Falcon Cash and Carry. Your one-stop shop for Diwali. Visit Falcon Cash and Carry today, 82A Syston Street, Leicester, LE12JU, and 2A Rowlatt's Hill, Leicester, LE54UN.
3: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.

0: किसी के बस में नहीं रहता जब किसी से किसी को प्यार हो जाता है। आप भी इस दौर से जरूर कभी ना कभी गुजरे होंगे, क्यों आपका भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था या नहीं हुआ?
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: भाई अभी तक एक भी सही जवाब मुझे नहीं मिला है कि आज के गीतों में क्या चल रहा है। अगर नहीं पता चले तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी, मैं बता देती हूँ कि आज के सभी गीतों में, इस आवर के सभी गीतों में विस्लिंग है। यस, आपने नोटिस किया कि विस्लिंग किस किस गीत में थी? सबसे पहले हमने शुरू किया आज का प्रोग्राम मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ, यस बॉस का गीत था, एंड अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक ने गाया था, जतिन ललित का था संगीत, और इस फिल्म के इस गीत में विस्लर थे नरकेश सरवैल, जो कि बहुत जाने माने बॉलीवुड में जाने जाते हैं कि उनकी विस्लिंग का कोई मुकाबला नहीं है, और इस गीत में उन्होंने विस्लिंग की थी एंड बहुत प्यारा गीत था। दूसरा गीत था द आइकॉनिक विस्लिंग इन द सॉन्ग अरे अरे ये क्या हुआ, दिल तो पागल है का गाना, एंड ये भी परफॉर्म किसने किया था, म्यूजिशियन जो है नरगेश सर्वे, उन्होंने इसमें भी विस्लिंग बजाई थी। एंड द 1997 फिल्म द कैरेक्टर राहुल प्लेड बाय शाहरुख खान एंड फेमसली यूजेस दिस कैची ट्यून टू टेंस द कनेक्ट विद पूजा प्लेड बाय माधुरी दीक्षित। सो उनका उत्तम सिंह ने वैसे संगीत दिया था इस फिल्म का, लेकिन विस्लिंग जो थी वो डब की थी नरगेश सर्वे ने। और तीसरा गीत दिल क्या करे, ये भी गीत राजेश रोशन जी ने इसका संगीत दिया था, किशोर कुमार ने गाया था, और इस गीत में भी विस्लिंग किसकी थी, नरगेश सर्वे जी की। तो मुझे उम्मीद है कि तीनों के तीनों गीत आपने पसंद किए।
2: ये है
1: Like a Radio Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.
0: कोका नूडल्स वाले ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस गीत के बारे में भी बता दूं मैं आपको कि इसमें भी तो विस्लिंग है ना, विस्लिंग इन द सॉन्ग, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये विस्लिंग किसने की थी, आर डी बर्मन साहब का संगीत है, उनके असिस्टेंट भी थे, सैक्सोफोनिस्ट थे मनहूरी सिंह जी, और ये वाली विस्लिंग उन्होंने की थी फॉर द फिल्म शोले। क्यों अच्छे लग रहे हैं गाने, इशारा तो मिल रहा है, संध्या भावसर, सलमा जी, अर्जुन जी, विमल जी, हरप्रीत संधू, महेंद्र पटेल जी,

0: हम भी ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे और इसी तरह से आप मेरा और मैं आपका साथ देती रहूंगी
1: Tasty track of the hour sponsored by Coca Noodles goodness in every bite try it today available in your nearest convenience store
0: और भाई अब एक मैसेज है जो आपके साथ शेयर कर लूं एंड ये मैसेज है फ्रॉम मर्सिडीज बेंज वैंस इन एसोसिएशन विद लाइका रेडियो नेटवर्क व्हेन यू रन योर ओन बिजनेस योर वैन इजंट जस्ट ट्रांसपोर्ट इट्स योर लाइवलीहुड एंड रेपुटेशन दैट्स व्हाई मर्सिडीज बेंज वैंस क्रिएटेड द अपटाइम प्रॉमिस अ कंप्लीट सुइट ऑफ business advantages things like 24/7 roadside assistance extended workshop hours real-time vehicle monitoring in fact everything you need to stay in control of your van downtime and keep your business moving search Mercedes-Benz vans today and discover their uptime promise TNC applies learn more at mbvans.co.uk/uptime promise
2: Like a radio
3: Sarita Sabharwal with your weekend classics
4: get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive
0: राइट भी मेरे पास दो गाने हैं एक ही फिल्म से 9/11 1957 की फिल्म है वैसे विंटेज गोल्ड प्रोग्राम नहीं चल रहा है लेकिन इन दोनों गीतों में विस्लिंग है तो मैंने सोचा कि इन दोनों में से एक गाना मुझे ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करना है एक गीत हम है राही प्यार के किशोर दा ने गाया था इस फिल्म का गीत और दूसरा था आँखों में क्या जी आशा भोसले एंड किशोर दा का गाया हुआ गीत ए और बी कौन सी है आपकी पसंद हम है राही प्यार के 9/11 का गीत है किशोरदा की आवाज़ में एंड बी इज आंखों में क्या जी और ये आशा भोसले एंड किशोरदा ने गाया है जोन सा भी गीत आपको ज्यादा पसंद है जल्दी से मुझे बता दीजिए
4: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क द लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क इन द यूके ब्रॉडकास्टिंग इन ग्रेटर लंदन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स ट्यून इन व्हेरेवर यू आर इन द वर्ल्ड बाय डाउनलोडिंग द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप लिसन लाइव और लिसन बैक टू योर फेवरेट शो or log on to LaikaRadio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@LaikaRadio.com or you can advertise on the Laika Radio Network by emailing sales@LaikaMedia.co.uk.
5: Laika Radio.

0: Are you listening? Leica Radio is now available across Birmingham on DAB.
1: और प्रोग्राम का ये गाना हमें पहुंचाएगा न्यूज़ तक।

0: प्रोग्राम के सेकंड आवर में आपका स्वागत आपका खैर मकदम करती हूँ उम्मीद करती हूँ विस्लिंग वाले गाने आपको पसंद आए इन द फर्स्ट आवर और जो गाने रह गए फिर किसी रोज जरूर शामिल करूंगी आइए सबसे पहले बैक टू बैक दो गाने सुनते हैं यश चोपड़ा जी को याद करते हुए क्योंकि आज उनकी जन्मतिथि है
1: Like a radio.
2: Like a radio.
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Sarita Sabawal.

0: आशा भोसले एंड विनोद राठौर की आवाजों में फिल्म चांदनी से सुना आपने इस गीत को और आज के प्रोग्राम के इस आवर का आगाज मैंने किया फिल्म लम्हे के एक बहुत खूबसूरत गीत के साथ जिसमें दो आवाजें थी लता मंगेशकर एंड हरिहरन जी की कभी मैं कहूं कभी तुम कहो और इन दोनों गीतों के जरिए हमने यश जी को याद किया यश चोपड़ा जी की आज जन्मतिथि है जन्म बर्थ एनिवर्सरी है और उनका देहांत हुआ था 21st of October 2012 में और आज ही के दिन इन 1932 इनका जन्म हुआ ये एक फिल्मकार की सबसे बड़ी विरासत उसकी उनकी जो फिल्मोग्राफी कहा जाता है माना जाता है जब भी पर्दे पर कोई प्रेम कहानी हम देखते हैं बारिश संगीत कविता खूबसूरत यादों के साथ सामने आती है तो कहीं ना कहीं यश जी की सिनेमाई जो है हमें याद आ जाती है कि किस तरह से उनकी फिल्म्स बनती थी शिफॉन की साड़ीज पहाड़ों को दिखाना ब्यूटी नेचुरल ब्यूटी को उन्होंने बहुत दिखाया था अपनी फिल्मों में आज उन्हें हम याद कर रहे हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी फिल्मों के लिए उनकी कहानियों के लिए उनकी सिनेमाई एहसास के लिए जिसने करोड़ों दर्शकों का दिल जीता था चाहे वो चांदनी हो मेरी चांदी वाला गीत हो या फिर पर्वत से काली घटा जो छाई यश चोपड़ा जी चले गए लेकिन उनकी बनाई दुनिया आज भी हमारे साथ है कुछ और गीत भी यश जी के मैं ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करूंगी इन द नेक्स्ट आवर एज वेल लेकिन बाकी के इस प्रोग्राम के इस आवर के बाकी के गीत महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ हम सुनेंगे आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पर और कोशिश रहेगी कि रोहन उनके बेटे से भी बात हो पाए
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर इनके जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी तो काम बड़ा आसान है. You can walk into the branch, you can go online और ऐप अगर डाउनलोड किया हुआ है तो आप उसके जरिए कहीं भी बैठे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले आज आपको मिलेंगे 126 rupees and 40 paisa टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Your Dubai property journey starts here.
3: With a special 3-day offer from Danube. Pay just 20% at booking. Danube pays the next 10% and you pay the remaining 70% on handover.
2: Available across all projects, Friday to Sunday only. So is mauke ko miss mat kijiye. Ports Real Estate invites you to the Dubai Property Expo, September 26th and 27th.
3: 10 AM to 8 PM at Marriott Hotel Smithway, Leicester. LE19 1SW. Discover greens, breeze and sharugs. Explore your options and meet our team for prices, availability and bookings.
2: Aiye, apni Dubai property journey shuru kijiye. No additional discount.
3: Terms and conditions apply.

0: What a beautiful song, Mahendra Kapoor saab ki awaaz mein gaya hua ye geet maine chuna tha from the film Ye Raat Phir Na Aayegi. 1966 mein ye gaana record hua tha aur aaj bhi itne saalon ke baad bhi aaj bhi itna pasand kiya jata hai. Hum yaad kar rahe hain us awaaz ko jisne deshbhakti, prem, virah aur jeevan ke anek rangon ko apni awaaz mein dhala. Ek aisi awaaz jise sunte hi dil mein kai purani yaadein taaza ho jati hain. Mahendra Kapoor saab, ek aisi awaaz jo samay ke saath purani nahi hoti balki har baar sunne par ek nayi yaad chhod jati hai. Ji haan, मैं आज महान प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर जी को याद कर रही हूं. उनका जन्म हुआ था 9th जनवरी 1934 को अमृतसर में. अपनी मधुर और दमदार आवाज के दम पर उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई. उनके गीतों में भावनाओं की गहराई भी थी और आवाज में एक खासी अट्रैक्शन थी. फिल्म उपकार का मेरे देश की धरती हो या वक्त का गाना हो, चलो एक बार फिर से, चाहे गुमराह के गाने हो या फिर उनकी अनगिनत यादगार गीत, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ ने कई जेनरेशंस के संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बनाई. उनकी आवाज़ सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही, उन्होंने फिल्म भक्ति गीतों का भी और देशभक्ति के गीतों का भी को भी अपनी आवाज़ दी और एक अलग सी पहचान दी. महेंद्र कपूर साहब को उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले, बहुत से उन्हें अवार्ड्स मिले थे. एंड मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे साथ हैं उन्हीं के सपुत्र रूहान कपूर, जो अपने पापा को आज याद भी कर रहे हैं और किस तरह से वो आज के दिन को मनाते हैं. मैं ज़रा उनका स्वागत करते हुए उन्हीं से पूछ लूँ. रूहान जी, कैसे हैं आप?
1: I'm good.
0: तो आज आपकी जिंदगी का भी, आपके परिवार के लिए भी दुख भरा दिन जरूर है क्योंकि आपने अपने पापा को खोया, लेकिन उनके फैंस से जब आप ऐसी बातें सुनते हैं, उनको याद करते हैं, उनके गीतों को सुनते हैं, तो कैसा महसूस होता है?
1: उनकी जो याद है हमेशा ही हमारे दिल में ताज़ा रहती है. मैं सच बताऊं कि उनको हमने कभी इत्तेफाकन देखी, 2008 में उनकी डेथ हुई थी. मतलब वो शारीरिक बोलते हैं, उन्होंने छोड़ा था अपना
0: जी.
1: अब उस टाइम पर उनको महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र पुरस्कार दिया था
0: जी.
1: तो अब वो जब वो अवार्ड डिक्लेयर हुआ था, ही वॉज लिविंग. Unfortunately, he could not receive the award.
0: Yeah, go to receive it.
1: CM साहब का फोन आया था, जो चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के, कि रोहन जी, we will come home. और मम्मी को वो लिफाफा पका देंगे, जो चेक वेक जो भी होता है, ट्रॉफी हम आपको दे देंगे. मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं कि पापा जी नहीं रहे इसलिए ना. It was his 75th birthday, which was the next year that I'm talking about.
0: जी.
1: तो for that. तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे में क्या करें हम लोग, कैसे पुरस्कार का शो करें. मैंने कहा पुरस्कार का शो कीजिए और बहुत बाखूब कीजिए, बिकॉज ऐसे लोग शरीर छोड़ते हैं लेकिन जाते नहीं कहीं भी.
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है.
1: हाँ, मैंने कहा वो बिल्कुल जीवित हैं और उनकी जिंदगी को, ये मैंने अपनी माँ से भी कहा था,
0: सेलिब्रेट
1: करते हैं. हम लोगों ने सबने ये माना कि मैंने कहा कि हम लोग उनको सेलिब्रेट करेंगे, ना कि एक नॉर्मल जैसे तरीके से. जो देखिये दुख तो होता ही है, आप किसी भी चीज को, आप अपने इतने अजीज, इतने मतलब जो हमारी जिंदगी थे, जो हमारी जिन जान थे, उनको हम खोएंगे तो दुख तो होगा ही. लेकिन अब दुख दुख करके हम लोग कितनी देर उसको ऐसे करेंगे ना. तो हम उनको सेलिब्रेट करते हैं हमेशा. वी ऑलवेज सेलिब्रेट हिम. हम बोलते हैं, अरे तो उस टाइम भी आप बिलीव ना करें सर सरिता जी, बाबी चौहान और मैं सीएम ने एक शो रखा उनकी याद में, 75th बर्थडे एंड द महाराष्ट्र सरकार, वी क्लब टुगेदर. And who came there? Jagjit Singh uncle ko bola, wo फटाफट उन्होंने हाँ कर दिया. Sonu Nigam ko bola, आपके Jaspinder Narula ji ko bola, Madhushri ko bola, Udit Narayan aaye, Shaan aaya, सब ने आके दो दो तीन तीन गाने डेट के गाए.
0: क्या बात है,
1: पूरी इंडस्ट्री वहां पर मेरे साथ. हाँ, और फिर उसके बाद Sahid Mee was on the stage, everyone came and sang and went over from there. Devendra Jain uncle आए, उन्होंने भी गाया. तो बहुत आलिशान शो हुआ और मतलब यादगार वैसा ऑडिटोरियम भरा और ऐसी गड़गड़ाहट तालियों की उन्होंने कभी सुनी नहीं थी पहले. तो दे वर ऑल फ्लोर्ड एंड दे वर सो हैप्पी एंड वी वर ऑल्सो हैप्पी कि भी हिज लाइफ हिज सॉन्ग्स आर सपोज्ड टू बी सेलिब्रेटेड. वी आर इनके मॉडल आवाजें हैं, इनके मॉडल कर्म रहे.
0: इतनी बुलंद आवाज, इतनी क्लैरिटी थी उनकी आवाज में, इतना हाई पिच पर गाते थे. और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझती हूँ कि उनसे मुलाकात हुई, उनके शोज देखे भी और स्टेज पर उन्हें इंट्रोड्यूस किया. वेम्बले कॉन्फ्रेंस सेंटर था जहाँ उनका शो हुआ था और बहुत अच्छा लगा था मिलकर. एंड ही वॉज डाउन टू अर्थ, इतने प्यार से, ऐसा लगता ही नहीं था कि पहली दफा मिल रहे हैं. बहुत अच्छे इंसान थे. तो आज क्या हो रहा है घर में?
1: बस अभी फैमिली में जा रहा हूँ. दिस कॉल टू टॉक टू ऑल आवर फ्रेंड्स हियर इन लंदन एंड टू माय डियर डियर सरिता जी एक्सप्रेस आर फीलिंग्स एंड ग्रेटिट्यूड फॉर रिमेंबरिंग हिम ऑलवेज फॉर गिविंग
0: ऑल
1: द लव टू हिम. ऑलवेज वी हम सब जो छोटे छोटे हमारे मोमेंट्स रहे लाइफ के, हम सब एंजॉय करते हैं सब बोल के एक दूसरे को.
0: बिल्कुल.
1: एंड डैड आपको पता है, देखिए सब जानते हैं, वाज अ वेरी गुड सिंगर, अ वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग, अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. बट वन पर्सन, वन थिंग दैट आई वांट टू ऐड इन दैट, ही हैड एक्सट्रीम गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, एक्सट्रीम सेंस ऑफ ह्यूमर. उनका जो ह्यूमर था ऐसा गजब का था. मुझे एक बार जॉनी लीवर भाई, हम लोग बैठे हुए, जॉनी एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, मुझे कहते हैं रोहन दुनिया मुझे हंसाती है, मैं हंसा हूँ दुनिया को, मैं हंसाता हूँ. आई मेक एवरीबडी लाफ. कहते हैं गॉड, आई एम फॉर्चुनेट, गॉड हैज गिवन ब्लेस्ड मी. कहते हैं मेरी चीजों से लोग बहुत हंसते हैं बहुत. लेकिन मैं कसम से कहूँ रोन, आई वांट टू कन्फेस टू यू, वन पर्सन हु मेड अ टेरिफिक इम्पैक्ट ऑन ह्यूमर टू मी इन माय लाइफ वाज महेंद्र जी.
0: जी जी जी.
1: कहते हैं ऐसा सटल ह्यूमर और ऐसा ह्यूमर, कहते मैंने देख, मतलब वो ऐसी चीज गुगली मार जाते थे, ऐसा वो
0: बोल जाते थे,
1: ऐसा कुछ बोल, हाँ वो मतलब बिना किसी को रियलाइज हुए उन्होंने कुछ बोल, मतलब ही हैड अ वेरी डिफरेंट सेंस, वेरी वेरी नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर. हिज जोक्स एंड आफ्टर द शोज ऑल आवर ऑर्गेनाइजर्स ऑल आवर म्यूजिशियंस यूज्ड टू वेट कि पापा जी आएंगे, तो वी यूज्ड टू मीट देम फॉर अ लिटिल टाइम बिकॉज एवरीबॉडी यूज्ड टू लाइक टू ड्रिंक एंड स्मोक, बट दे यूज्ड टू नॉट डू इट इन फ्रंट ऑफ डैड.
0: ये यादें रहे, बस यादें हैं, यादें हम चेरिश करते हैं. रोहन बहुत दिल चाह रहा है लंबी बात करने को, लेकिन वक्त बस यहीं तक इजाजत देता है. थैंक यू सो मच महेंद्र कपूर साहब को सदियों तक लोग याद रखेंगे इसी तरह से, और उनके गाए हुए गीत हम हमेशा चेरिश करते रहेंगे. थैंक यू एवर सो मच, और सभी को नमस्कार. थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते. ये थे रोहन कपूर, महेंद्र कपूर साहब के बेटे, और ये भी गाते हैं और इनके बेटे भी गाते हैं, बेटा भी बहुत अच्छा गाता है. तो उनकी भी प्राइवेट एल्बम्स वगैरह रिलीज हो रही हैं. चलिए ये बता दूं, मेरा प्यार वो है, वो गीत आप तक पहुंचाया था डेरी वैल्यू वालों ने.
2: Brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: Sarita Sabharwal with the biggest classics on Lyca Radio.
2: महेंद्र कपूर साहब को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके गाए हुए गीत आप तक पहुंचा रही हूं। उनके बेटे रोहन कपूर से अभी बातचीत हुई और अब मैं जरा आपको बता दूं कि कविता कृष्णमूर्ति जी आ रही हैं परफॉर्म लाइव एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1 नवंबर, ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एज ए दिवाली स्पेशल। आज तो स्पेशल डे भी है, रामायण स्पेशल दिखाई जा रही है एंड ओवो अरीना में, ओवो वेम्बली अरीना में। अगर नहीं टिकट लिए तो जल्दी से चले जाइए, 6 बजे शो शुरू है। टिकट्स फ्रॉम और कृष्णमूर्ति जी का, कविता कृष्णमूर्ति जी का शो हो रहा है 1 नवंबर को रॉयल अल्बर्ट हॉल में। टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू बॉक्स ऑफिस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क। और रागासन के बारे में बता दूं कि रागासन लाइका रेडियो नेटवर्क हैज़ confirmed a partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Details at LykaRadio.com.
1: This is Lyca Radio across the Midlands. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Lyca Radio. Lyca Extra podcast update.
2: और इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि इस बारी हमारे होस्ट हैं रूबी रजा एंड डॉनी ब्रास्को एंड गेस्ट हैं हमारे सीईओ राज बदन जी, जो कि उन दोनों से बातचीत करेंगे और अपने ब्रिटेन्स लार्जेस्ट एशियन रेडियो नेटवर्क के बारे में बातचीत करेंगे एंड ये बताएंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही बिहाइंड द टाइटल। और ज़रूर देखिएगा लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज़ अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
1: Lyca Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Lyca Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Lyca Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to lycaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@lycaradio.com or you can advertise on the Lyca Radio Network by emailing sales@lycamedia.co.uk.
3: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है।
4: India ke top 1% hosted by Anil Kapoor every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
5: Your brain now, play the game.
4: Get ready, UK. Snill Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
6: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
4: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
6: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Lyca Radio Network.
7: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
8: Join legendary singer Kavita Krishnamurthy.
7: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
8: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
7: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
8: Exclusive radio partner, Lyca Radio Network.
9: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars. Supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner, Lyca Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit SAFUK.com.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 126.87, Afghanis 86.1, Pakistani rupees 366.96, Bangladeshi taka 162.96 and US dollars 1.32.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: Gold ka rate is work market mein 104 pounds exactly per 1 gram sona.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278. Leica
3: Radio. बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे
1: 10
0: to 1 p.m.
1: राइट आप दो गीत और सुन पाएंगे महेंद्र कपूर साहब की आवाज में गाए हुए अगला गीत है आशा जी साथ दे रही हैं इस गीत में दिल और मोहब्बत से मैंने चुना है ढेर सारे गाने हैं बहुत सारे गाने हैं लेकिन अब उनमें से कुछ एक चुनना बहुत मुश्किल काम होता है और आप सभी को मेरी रोहन कपूर से हुई बातचीत बहुत पसंद आई ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा पुरानी यादें जब हम ताज़ा करते हैं तो और भी अच्छा लगता है और मेरी भी बहुत सारी यादें हैं बहुत सी सेलिब्रिटीज़ के साथ मुलाकात हुई उनसे उनको इंटरव्यू भी किया तो अच्छा लगता है चलिए अब ये गीत सुनते हैं महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में गाया हुआ और उसके बाद गुमराह का एक गीत आ रहा है जो हमें लेकर चलेगा न्यूज़ तक न्यूज़ के उस पार कुछ और यश जी की फिल्मों के गीत होंगे हो सकता है महेंद्र कपूर साहब की भी आवाज़ शामिल हो

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो यहीं कहीं

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत अब दिल में यही बात इधर भी है

0: दो गाने आपने सुने, ब्यूटीफुल गाने, और उम्मीद करती हूँ आपने ज़रूर इंजॉय किए होंगे, साथ साथ गुनगुनाया भी होगा। पहला गीत मैंने फिल्म डर से चुना था, 1993 की फिल्म, और दूसरा गीत था फिल्म सिलसिला से, और दोनों ही फिल्में बनाई थी यश जी ने। आज यश जी की जन्म तिथि है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी 27 सितंबर 1932 को उनका जन्म हुआ था लाहौर में। उन्होंने अपने बड़े भाई बीआर चोपड़ा के साथ काम करते हुए फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखी और आगे चलकर अपनी अलग सी पहचान बनाई। उन्होंने धूल का फूल, वक्त, दाग, दीवार, त्रिशूल जैसी फिल्मों में अलग अलग विषयों को पर्दे पर उतारा, और बाद के जो साल थे उनमें प्रेम कहानियों को अलग सी शैली में दिखाया था। बहुत ही अच्छे, बहुत नेक इंसान थे यश जी से भी। अब आप कहेंगे सरिता सबसे मुलाकात हुई, यस, यश जी को मैंने इंटरव्यू किया था एंड उनका इंटरव्यू मेरे लिए एक यादगार इंटरव्यू है, लेकिन क्या करूँ, फिर से मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, तो कौन बिलीव करेगा सरिता कि यश जी से मुलाकात हुई। यस, आई डिड गो टू समबडीज हाउस टू इंटरव्यू हिम। वेल, बता देती हूँ कि मेफेयर में उनका होटल है और उन्हीं के घर में जाकर मैंने उन्हें इंटरव्यू किया था, एंड उसी होटल में पहले मैंने करण जौहर के फादर यश जी को और साथ में महेश भट्ट जी को भी उन्हीं के होटल में इंटरव्यू किया था। सो अब मैं नाम नहीं लूँगी, पर बहुत सी यादें हैं हमारी यश जी के साथ भी। सो आपने दोनों गीत सुने, और यश जी को की फिल्मों के बारे में क्या कहूँ, उन्होंने एक से बढ़कर एक अच्छी फिल्में बनाई हैं, और पर्दे पर कई प्रेम कहानियाँ, बरसात दिखाई, संगीत उनकी फिल्मों का यादगार है। हर किसी फिल्म का संगीत आप उठा लें, यश जी की फिल्मों का संगीत, क्योंकि उनको संगीत की खुद भी बहुत नॉलेज थी, और उनकी फेवरेट सिंगर थी लता मंगेशकर जी। खूबसूरत यादें दिखाते थे वो हमेशा, कविताएं, जैसे फिल्म दाग में कविता पढ़ना किनका, राजेश खन्ना का, एंड देन सिलसिला में अमिताभ बच्चन का कविता पढ़ना। सो ऐसे उनकी फिल्मों की अलग सी पहचान बन गई थी, तो आज हम उनको याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी, लेकिन उनकी फिल्मों के कुछ एक गीत मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। हाँ, यहाँ भी चॉइस दे रही हूँ दो गीतों की, फिल्म दाग में से मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कौन सा गाना आप तक पहुँचाऊँ। इज़ इट मेरे दिल में आज क्या है, या फिर हम और तुम और हम खुश हैं आज यूं मिल के, वो वाला गीत आप सुनना चाहते हैं। ए, मेरे दिल में आज क्या है, बी इज़ हम और तुम और हम, कौन सा गीत आपके दिल के करीब है, जल्दी से बताते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी हाँ, SBI वाले आज आपको दे रहे हैं 126 rupees and 40 paisas against 1 British sterling pound. You can go into the branch, you can always do it online, या फिर SBI UK का अगर आपने Yono का app download किया हुआ है तो घर बैठे आप पैसे transfer कर सकते हैं. Terms and conditions apply.
1: UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar. One performer. Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover, live UK Tour 2026. 29th October, Ova Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.

0: हमारी इस हफ्ते की आर्टिस्ट कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाया हुआ 1942 अ लव स्टोरी से मैंने चुना था इस गीत को। आर डी बर्मन साहब ने संगीतबद्ध किए थे इस फिल्म के गीत, लेकिन इन गीतों की शोहरत देखने के लिए वो जिंदा नहीं रहे थे, उससे पहले ही उनका देहांत हो गया। लेकिन 1942 अ लव स्टोरी के लिए बहुत से गीत पसंद किए गए, कि इस फिल्म के सारे गाने पसंद किए गए, और कुमार सानू को एक लड़की को देखा के लिए अवार्ड भी मिला। मजरू सुल्तानपुरी साहब को भी अवार्ड मिला था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एंड बहुत से गीत हैं जो मैं सोच रही हूँ प्रोग्राम में शामिल करूँ, पर देखते हैं कि वक्त कहाँ तक इजाज़त देता है। ज़हीर खान साहब कराची में सुन रहे हैं, सलमा जी मेडस्टोन कैंट में, और आप हैं हमारे हरीश जी, थैंक यू, मेरे दिल में आज क्या है वो गीत सुनना चाहते हैं, और के भमरा जी आप बी नंबर सुनना चाहते हैं, विजय गुजरी जी सटन में सुन रहे हैं, उल्लास टोरंटो में, हरप्रीत संधू वैंकूवर में, दिनेश पोपट जी थैंक यू, अर्जुन जी, हना भारती जी, वजाहत आप भी सुन रहे हैं प्रोग्राम, सोनी रावल जी, मिसेस शेख तोशी जी आप भी सुन रही हैं, संध्या बाबसर, करसान पिंडोरिया आपने लिखा है कि आजकल हम लंदन में नहीं हैं बल्कि अमृतसर में हैं आज, और टुमारो ट्यून हम ट्यून करेंगे लाइक अ गोल्ड, इंजॉइंग योर चॉइस ऑफ म्यूजिक एंड चॉइस ऑफ सॉन्ग्स, विल बी विजिटिंग जलियांवाला बाग एंड गोल्डन टेम्पल्स एंड वाहेगुरु जी नहीं वाघा बॉर्डर भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, प्लीज़ प्ले अ नाइस सॉन्ग फॉर अस, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि जो भी गीत मैं प्ले कर रही हूँ आपको पसंद ज़रूर आ रहे होंगे। एंड जादू तेरी नज़र सुनना चाहते थे, वाह वजाहत जी थैंक यू आपका बहुत बहुत, प्रकाश सुथर जी नॉर्थ हॉल्ट में, वत्सला जी, इंतशाब एंड अरुणा जी, शेखर जी, रेणु जी, मोहम्मद अयूब चौहान साहब, महेंद्र पटेल इन क्रॉयडन, भानु शाह, हंसा जी, हसुमती जी, आप सभी का, फरीदा गुलाम अली जी, सबका मैं थैंक्स करना चाहूंगी।
1: दिस इज लाइक अ रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स, फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग, डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स, विजिट डेरीवैली.net।

0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Like a radio. और मेरे बहुत से साथियों की फरमाइश पर आ रहा है आज के प्रोग्राम का अगला गीत किशोरदा की आवाज में.
0: Like a radio. Now in more places than ever before. Birmingham, Bradford, Huddersfield and Leeds.

0: लता मंगेशकर एंड कुमार सानू ऑन योर रेडियो सेट्स. यू आर लिसनिंग टू लाइका रेडियो.
1: लाइका रेडियो
0: एब्सोल्युटली. यू आर ट्यून इन टू लाइका रेडियो एंड आई एम हियर विद यू टिल 10 पीएम. वेल ऑफ कोर्स दिस आवर इज अबाउट टू यू नो फिनिश वेरी सून एंड नेक्स्ट यू विल हियर अ वेरी सूदिंग ट्रैक फ्रॉम द फिल्म वन एंड ओनली लापता लेडीज. वेल दिस इज लाइका रेडियो. ऑल्सो लेट मी टेल यू वी हैव सिस्टर रेडियो विच इज लाइका गोल्ड विच इज लंडन्स नंबर वन एशियन रेट्रो music station, so which is available on 10:35 a.m. and DAB, so make sure that you tune in there as well.
1: Feeling smooth with Nirich.

0: Leica Radio. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
0: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02203736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
2: Stop all travel 7 days a week. Stop all travel 24 hours a day. We're at our peak.
3: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Southall Travel.
4: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there.
5: Southall Travel. At all protected.
6: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11.
8: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place.
8: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02 03.